0: सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयानंद पुरी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

0: A very good morning to everyone present here. Honorable Minister for Road Transport and Highways, Shipping and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkariji. Honorable MOS Independent Charge Ayush, Shri Shripad Yeso Nayakji. Honorable MOS Health and Family Welfare, Shri Ashwani Kumar Chaubeji. Professor Nagendra, Acharya Balakrishna, Vaidya Rajesh Kotecharji, dignitaries in this auditorium, ladies and gentlemen, let me have the pleasure and privilege of welcoming you for the second day. And we are today extremely honored to have with us Shri Nitin Gadkari ji as our chief guest for the valedictory session. And on behalf of all of you, I welcome him today. We've had 2 days, sir, and yesterday's discussion were rather fruitful, and there is some unfinished agenda which we'll go ahead with today. And we indeed happy to report that what we set out to do, it looks like we will be able to accomplish it in these 2 days that we have with us. Yoga for wellness is the subject of this year's discussion, and as I mentioned yesterday, one of the most apt subject for the simple reason that it is not just about practicing of yoga, but also about using it in the lives of every human being for his achieving better health and wellness in life. Earlier, yoga used to be practiced for generations by Indians. Recently, it has acquired an international presence and global acceptability, thanks largely to the great efforts and leadership of our Honorable Prime Minister. We also now have the International Yoga Day. So with this global acceptability, I feel that the Indian responsibility is far greater than it was ever before. And this conference and the views that will be expressed in this conference will help us find policy parameters which will actually guide us in the global arena. We are all aware that yoga is not just about cure. It's about health. It's about overall well-being and wellness. In the 2 days of conference that we have had here, sir, there are two striking features that I would like to mention. The first is that we have, in a holistic manner, talked about integration of yoga. And the second, that we have had sessions after session to discuss specific impact of yoga on various disease profiles. If we look at the integration aspect, we need to leverage the wealth of knowledge that we have in the traditional medicine field in India and actually integrate it with modern medicine. And I say so also because I have the privilege of holding, looking after both the departments. And that integration is extremely critical if we really want to build a happy, healthy nation. And so far our approach has been of co-locating. The approach has to move from co-location to integration, where we actually cross-flow. The cross-referrals must happen. And it's not just a matter of choice, but wherever the need arises, we should be able to send the patient to either side. But more important than that, we should use yoga to ensure that we have very few patients at the end of the day. And that is the ultimate aim. The second aspect that I mentioned is about the specific impact it would have on diseases. We need to popularize yoga, and that is very well said and very well accepted. But we also need to generate scientific evidence about the value of yoga if we really want acceptability in the true term. Because in this world of science today, merely saying does not mean much. And it is conferences like this with personalities like you sitting in front who are so well versed with what it means that we need to take this forward. And it is extremely heartening, sir, to see that in this hall today, we not only have great practitioners of Ayush of international level, but also some of the extremely well-known personalities from the modern medicine of the Indian stream who are well recognized. And this is the kind of integration that we are aiming to happen. And I'm so happy to welcome all the doctors here, because they will now become a part of this integration in future. I'm so sure that the events that are to come will address this, but let me today have the privilege, and a proud privilege at that, of welcoming the Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shipping and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Sir, we look forward to your speech today, largely as guidance on where we need to take this sector, and also for your views on how we need to work on the integration for a healthy India. On behalf of the Ministry and all of us present here, a very warm welcome, sir. We would also like to welcome our Minister of State for Ayush, Sri Sripad Yesso Naik ji, who, as I mentioned yesterday, has been on the forefront of whatever has been happening in Ayush, and we are extremely happy to have him here, and we welcome you on behalf of everyone present here, sir. We are also honored today by the presence of Sri Ashwani Kumar Chaube ji, the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, who has been kind enough to spare his time to join us for this function today, and a very, very warm welcome to you, sir. I would also have the privilege of welcoming Professor Nagendra, who has been a doyen in this field of yoga, Sri Balakrishna ji, who has spread this message far and wide, and Swami Maheshwaranand ji, who is here with us. All of them have contributed to the spread of yoga, not just within India, but across the globe. I welcome all of them on behalf of everyone present here, and we do hope that you will be able to contribute a lot, not just to the deliberations today, but also to the future guidance. I do hope that this day, half a day that is left for us to discuss, will bring about more scientific knowledge into what we are discussing, and we will be able to have at the end of the day a policy parameter which government can use to shape its policies in the days to come. A very, very warm welcome to all of you, ladies and gentlemen. I hope we have good deliberations today. Thank you very much.
1: Thank you, sir, for highlighting the perspective of the government, not only towards promoting yoga and Ayurveda, but also integrating it with the other medical sciences for the greater benefit of the mankind. And now, ladies and gentlemen, I would like to request Shri Nitin Gadkari ji, as he has another pressing engagement, but he has taken out time to be with us. I request him for his valedictory address.
2: आयुष विभाग के माननीय मंत्री प्रीपाद जी, आदरणीय मंत्री अश्विनी जी, नागेंद्र जी, आचार्य बालकृष्णन जी, स्वामी जी, विभाग के सचिव श्री मिश्रा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं भारत की जनता की ओर से श्रीपाद जी को और आयुष मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने योग विज्ञान को केवल भारत तक नहीं तो दुनिया के कोनों कोनों तक यशस्वी रूप से पहुंचाने का कार्य किया है, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि हम योग विज्ञान को प्रसार करने के लिए विशेष ध्यान देंगे, और स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड योग डे की शुरुआत हुई। और जब हम विदेशों में जाते हैं तो जिस प्रकार का रिस्पांस वहां की जनता से योग प्रसार के लिए, योग प्रशिक्षण के लिए मिलता है, दिस इज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। और एक बात सिद्ध हुई है कि केवल यह प्रचार और पब्लिसिटी के कारण नहीं हुआ है, तो योग के अनुभव के कारण स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ है उसके कारण स्वाभाविक रूप में ये लोगों की स्वाभाविक रिएक्शन है कि जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसका अनुकरण भी कर रहे हैं। मेरा वजन 130 किलो था, अभी मैं 90 केजी पर हूं। तो वैसे बीच में सर्जरी भी मैंने की थी, पर 95 पर मैं स्टेग्नेंट था। अब मैं रोज हमारे केरल की एक संस्था है उसके द्वारा घर में ही मैं सुबह तेल मालिश भी करता हूँ और स्टीम बात भी लेता हूँ, और करीब 10 11 12 सेटिंग मेरे हुए हैं। मेरा जो 95 पर स्टेग्नेंट था वो 90 पर आ गया। तो वजन कम करने से स्वाभाविक रूप से हेल्थ पैरामीटर सुधर जाते हैं। और मैं एक घंटा सुबह व्यायाम भी करता हूँ, योगासन भी करता हूँ, तो मुझे अपने स्वास्थ्य में, प्रकृति में, एनर्जी में बहुत बड़ा सुधार महसूस हुआ। और इसलिए अभी मेरे पास इतने डिपार्टमेंट है और इतना काम है कि सुबह 9 बजे से मैं काम को लगता हूँ तो रात को 1 बजे तक मैं लोगों को मिलते रहता हूँ। पर मैं आखिरी तक काम कर सकता हूँ, एनर्जी रह सकती है, इसका कारण मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, उसके कारण स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी कोई नहीं है। और नागेंद्र जी और आचार्य बालकृष्णन जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि इसमें किस प्रकार से कितने अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी, इसमें से नियमित रूप से योग और इसके साथ काम करने से स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो सकता है, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आज हमारी जो एलोपैथी है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, योगा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इसलिए आयुर्वेद, योग विज्ञान, ये दोनों इस प्रकार की हमारी विरासत है कि पूरे दुनिया में हम दुनिया के हमारे सभी विश्व के भाई और बहनों को सुखी, समृद्ध और संपन्न जीवन के साथ निरोगी और उत्तम स्वास्थ्य का जीवन उनको योग के कारण मिल सकता है। और इसलिए अब इस महत्व को तो लोगों को समझ में आया है, पर मेरे दृष्टि से 2-3 सुझाव मेरे मन में है कि जब मैं विदेशों में जाता हूं तो ऑथेंटिक योगा टीचर जो ये सब सिखा सकते हैं, इसकी काफी कमी है। वैसे ये कहना नहीं चाहिए, पर अगर अच्छे योग टीचर होंगे और वो सभी प्रकार से परफेक्ट होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको एक रोजगार भी अनेक लोगों को मिल सकता है। तो ये योगा टीचर निर्माण करने का काम हिंदुस्तान में हो सकता है। और इसलिए मैं विभाग को अनुरोध करूंगा कि इसका भी कोई सिलेबस तैयार होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और जैसे आचार्य बालकृष्णन जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, हमारे बंगलोर के हमारे आदरणीय नागेंद्र जी है, तो मुझे लगता है इसी अभी हमने जैसे हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में किया है कि हमने ग्रेडेशन किया है कि योग प्रसार में जैसे काम करने वाली संस्था है वैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर का ग्रेडेशन किया है, जो राष्ट्रीय महामार्ग बनाते हैं, वैसे इस संस्था में काम करने वाली जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, अच्छी संस्था है, उनका ग्रेडेशन करना चाहिए और उनके कार्य के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, उनके अध्ययन के आधार पर और उन्हें जो प्रशिक्षित लोग किए उसके आधार पर अगर उनको ग्रेडेशन मिनिस्ट्री करती है स्ट्रिक्टली ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो ऐसी संस्थाओं को एफिलिएशन दिया जा सकता है। और इन संस्थाओं के द्वारा ये जो हमारे कोर्सेस है इसकी अगर ट्रेन मैन पावर अगर तैयार होगी तो उनको निश्चित रूप से विश्व में योग प्रसार का काम भी होगा और उनको रोजगार भी मिलेगा और अनेक लाखों लोगों का जीवन स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसका जो सिलेबस बनना चाहिए उसमें भी अलग अलग प्रकार के लोग काम कर रहे हैं और इसलिए सिलेबस बनने के लिए उसमें प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए, सेकेंडरी रूप में क्या होना चाहिए और फाइनल रूप में क्या होना चाहिए और रिसर्च में क्या होना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं एकेडमिक काउंसिल जैसी रहती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज जैसी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उसी साइंटिफिक तरीके से इसका प्रबंधन अगर हमने किया तो प्रोफेशनल अप्रोच में हम लोग दुनिया के अनेक लोगों तक पहुंचने में यशस्वी हो गए। जैसे नॉलेज का व्याख्या की है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, और उसके साथ साइंस है, हमारा विज्ञान है, योग विज्ञान है। तो आजकल ये हम लोग कहते हैं कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड वेलफेयर इज द मिशन फॉर द गवर्नमेंट। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज एंड ये जो है वेल्थ एंड वेलफेयर, तो वेलफेयर का बड़ा अर्थ यही है कि विश्व का कल्याण। हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत हमको ये दिखाती है कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सहिष्णुता, सर्व में समावेशकता, सहजता, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जो कह रहे वही सही है, वही श्रेष्ठ है, हमारा भगवान श्रेष्ठ है और बाकी श्रेष्ठ ने, ऐसा कभी नहीं कहा। हमने यही कहा कि सभी भगवान श्रेष्ठ है, सभी उपासना पद्धति श्रेष्ठ है, और आगे तो हमने यही कहा है कि आकाशात प्रीतम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से नदियों का पानी बहते बहते सागर को मिल जाता है, वैसे हम किसी भी भगवान को अगर वंदन करते हैं तो अंतिमतः वो भगवान को ही मिल जाता है। तो ये जो उदारवादी दृष्टिकोण हमारा है, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। पर हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत और हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, इसका समन्वय आज के ज्ञान विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन के युग में उसका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया में जब कोई भी बात लेकर हम जाएंगे तो वहां के देशों में, वहां के लोगों में उसको स्वीकार करने की एक पद्धति है, और उस पद्धति को तैयार करना और उस पद्धति के द्वारा हमारी जो मूलभूत बातें हैं वो उन समाजों को उनकी भाषा में वो समझते, उस स्वरूप में प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा और व्यावहारिक दृष्टि से उन लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, यही काम आयुष विभाग की ओर हो रहा है। हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री की काफी बड़ा समर्थन इस बात के लिए है और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इसको ध्यान में लेते हुए आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और आज 3-3.5 साल में इस पूरे दुनिया में योग डे को पॉपुलर करने में हमारे विदेश मंत्रालय और आयुष मंत्रालय जो इनिशिएटिव लिया है, उसके कारण निश्चित रूप से भारत का भी सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। मुझे लगता है कि विश्व का कल्याण हो, ये जो हमारा भाव है, इसमें विश्व को, विश्व के जनता लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी संस्कृति है। तो क्यों ने उन सब लोगों के लिए हम विशेष रूप से इसका प्रसार करके उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करें और उनके जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाए। एक तरफ जो बातें पुराने समय से आई है वो सिद्ध हुई है, काल के कसौटी पर सिद्ध होकर लोगों ने उसको स्वीकार किया है, और इसके साथ साथ नया रिसर्च भी हो रहा है। एक बात आचार्य बालकृष्णन जी यहां है और मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि रिसर्च लगातार होनी चाहिए। नदी का प्रवाह जब बहते रहता है, वो जिस प्रकार से बहता है, वैसे लगातार रिसर्च बहते रहना चाहिए, और रिसर्च यही किसी भी देश के लिए सबसे भविष्य में बड़ा कैपिटल होता है। और रिसर्च करने के लिए अनेक जगह पर सरकार की ओर से जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो विशेष रूप से इसी मिशन में काम कर रहे हैं, इनको हम अलग अलग योजनाओं के द्वारा उस कार्य के लिए सरकार के द्वारा मदद करें, ताकि वो रिसर्च में और प्रोफेशनल रिसर्च हो। और ये रिसर्च अगर होगा तो हमारे, पहले ही हमारे संतों ने जो कुछ बताया वो तो बहुत ही अमोल ऐसा एसेट, संपत्ति के रूप में हमारे पास है। पर उसके साथ साथ नया रिसर्च जो है वो उसको जुड़ेगा तो कंप्यूटर के कारण और बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। आज हम लोग हमारी वेबसाइट पर एक आधी बात डाल देते हैं तो बहुत कम समय में दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी योग के बारे में, योग की पद्धति के बारे में, योग के प्रशिक्षण के बारे में, योग के रिसर्च के बारे में, विविध प्रकार की जो स्वास्थ्य की तकलीफ है उसके बारे में, जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं उसके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको भारत सरकार की तरफ से स्टैंडर्डाइज करके, उसको रिकॉग्नाइज करके, उन पद्धति को और पॉपुलराइज करने में हम दुनिया तक लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि विश्व के स्वास्थ्य को हम सुधारने में कामयाब होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ये प्रयास तो हो रहा है, पर कभी कभी प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक ये अर्थ में नहीं कह रहा हूं। प्रोफेशनल मीन्स मैनेजमेंट वाइज परफेक्ट, और ये जो इसका प्रबंधन है ये करने के लिए आयुष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी भाषा में, सभी देशों में और सभी प्रकार के ऐसे प्रशिक्षक को तैयार करके उनकी कोर्सेस, उसको ठीक प्रकार से रिकॉग्नाइज करना और उसके आधार पर नए नए रिसर्च के ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग में भी आजकल जैसे हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में कहते हैं कि मास्टर ट्रेनर होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फिर उसकी लेयर नीचे जाती है और फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी को तैयार करे। क्योंकि एक बात सच है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अटल है, यावत चंद्र दिवाकरो, ऐसा हमारे बीच में तो कोई है नहीं है। तो एक व्यक्ति जो इतना अध्ययन करता है, जीवन में इतना ज्ञान मिलाता है, उसके समाप्त होने के बाद वो ज्ञान भी चला जाता है, तो उस ज्ञान को वो उसके द्वारा उसके सम विचार के बाकी लोगों को भी प्रशिक्षित करेंगे तो उसी ज्ञान की भूमि के आधार पर वो और ज्यादा अच्छा काम करेंगे और ऐसे काम करने वाले अनेक समर्पित लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। वैसे एक आखिरी में एक बात मैं कहूंगा कि एक फिलोसोफर ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, कहा विवेकानंद जी ने कहा है, तो खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जाता। और इसलिए हमारे इस ज्ञान को देश के हजारों लाखों नौजवान युवा युवतियों को अगर प्रशिक्षित करें और वो उनके प्रोफेशनल डिसिप्लिन लाइफ अप्रोच से इसी के साथ प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण प्रबोधन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन त्रिसूत्री पर आधारित ये कार्यक्रम को हम आगे लेके जाएंगे तो विश्व का भी कल्याण होगा, भारतीय संस्कृति का नाम भी ऊंचा होगा, योग विज्ञान को स्वीकारने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कहना मैं थोड़ा सा हिम्मत करके कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है वो कभी कभी आराम भी देती है पर उसके दुष्परिणाम जो है साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, और उस साइड इफेक्ट्स के कारण भी अनेक लोगों के जीवन को किस प्रकार से डिस्टर्ब हुआ यह नजदीक से देखा गया है। हमारी उपचार पद्धति जो है इसमें साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, और इसलिए इसके बारे में रिसर्च तैयार करना, वेबसाइट डेवलप करना, प्रोग्रामिंग डेवलप करना, इसके वीडियोस तैयार करना, इसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसके प्रेजेंटेशंस तैयार करना, अलग अलग भाषा में उसका उपयोग करना, उसके कोर्सेस एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ऑफ स्टडीज को बनाकर उसको नोटिफाई करना, उसके आधार पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिनिमम ग्रेजुएट लेवल तक का ट्रेनिंग, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट का ट्रेनिंग, फिर उसके बाद रिसर्च का ट्रेनिंग, और यही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। अभी रामदेव बाबा जी और बालकृष्णन जी बहुत बड़ा आयुर्वेद पर रिसर्च और यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, उसी में वो योग विज्ञान का भी काम कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है इन सब बातों को सरकार ने निधि देने की आवश्यकता है। सरकार अगर

0: को सही में कंट्रोल करने में फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, निर्णय प्रक्रिया को गतिशील रखें और इनकी सलाह से बने हुए उद्दिष्टों को पूरे करने के लिए ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को उनको प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करने के लिए जितना आवश्यक है उतना सरकारी सहयोग करें, रिकग्निशन दें, रिस्पेक्ट दें और अच्छे काम करने वालों को साल भर में एक बार पुरस्कार दें। तो मुझे लगता है कि ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रोत्साहन होगा, क्योंकि एक बार एक ने मुझे पूछा था कि सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि अच्छे काम करने वालों को अगर हम सम्मान करें साल में एक बार राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बढ़ेगा और काम करने वाले समर्पित अनेक लोगों की संख्या बढ़ेगी जो इस विचार को और कार्य को लेकर आगे जाएंगे और ये कार्य निश्चित रूप से आगे जाएगा। इसकी बहुत अच्छा बेस श्रीपाद जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ने खड़ा किया है, प्रधानमंत्री जी का पूरा सपोर्ट है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, निश्चित रूप में विश्व में इन सब सपनों को पूरा करने का एक दायित्व विभाग के ऊपर है और आज वर्ल्ड से सभी लोग आए हुए हैं, ये सपना पूरा होगा ये मेरा विश्वास है। मैं थोड़ा पहले खड़ा हुआ हूँ क्योंकि आज गंगा पर 12 बजे कार्यक्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम की घोषणा भी वहाँ होने वाली है और इसलिए मुझे वहाँ जाना आवश्यक है, नहीं तो मैं सभी आदरणीय अतिथि जी के विचार सुनने में मुझे भी बहुत रुचि थी, पर यह कार्यक्रम का मुझे जाना पड़ रहा है। मैं उन सब की हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और फिर से एक बार इस कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने अपने संदेश के माध्यम से अपने अनुभव जो आपने हमारे साथ बांटे। मैं माननीय मंत्री जी एक छोटी सी भेंट, स्मॉल टोकन ऑफ आर ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन टू यू, मैं रिक्वेस्ट श्री श्रीपद येसु नायक जी टू काइंडली प्रेजेंट द मेमेंटो, एक स्मृति चेन भेंट कर माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहेंगे। I think, ladies and gentlemen, the Honorable Minister inspired everyone, people who are practicing yoga, by sharing his own experiences since the time he has practiced yoga, the change which he has experienced in himself, inspiring the researchers and academicians to continue with the research work, for their contribution is going to be further promoting yoga and taking it to the world. He also brought in a lot many suggestions and recommendations regarding training, research and effective communication to take yoga more global, and assured everyone the hand-holding by the government, the support by the government towards encouraging people who are working in the field, not only by recognizing them through awards, but also whatever support in terms of funding or whatever other support which are requiring, he assured of the support to them. So I think coming from the Honorable Minister definitely inspires and motivates everyone who is working in the field. And now I would like to request Professor H.R. Nagendraji, the Chancellor of S. Vyasa. Once again, ladies and gentlemen, a very simple person who, with his renunciation and seva bhav, he is doing a yeoman service to humanity.

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामान्य स्वामी गुरुदेव
1: की जय।

की आराध्य भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it, Puspa. One version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय।
1: इट वॉज थ्री और फोर,
0: तीन बाबू जी, तीन
1: थ्री फोर फाइव
0: टू मोर
1: No, no, no, now. Good. Anybody come? Pushpa, you or who?
2: She. Hariputji or she.
1: Okay.

लक्ष्मी बीरबाई की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय।

0: आराध्य भगवान श्री जीत नारायण महाप्रभु जी
1: की जय।
0: देवदि देवम श्रीधरपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

शिष्याल जी राम जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज की आनंद की जय। सत गुरुदेव की जय।

अम्बुडे श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री अकल अलका पुरुष महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद चिस्त गुरुदेव की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय। सदेव पुरुष महादेव की जय। श्री हिंदू धाम समर मन वन सर गुरुदेव की जय। विश्व गुरु मामलेश्वर परमांश स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय, श्री देवपुरी समादेव की जय, श्री रेवत सिंह जी की जय।